हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो हमारा आपके साथ फरमाइशों का सिलसिला बना रहता है, और ये सिलसिला सुबह 11 बजे से श्रोता साथियों हमारा आपके साथ बना रहता है दोपहर 1 बजे तक। इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं पहले बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है इंदौर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है बागबान, गीत के बोल हैं धरती तर से अंबर बरसे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी जी, लड्डू देविका चौधरी जी। इसी बीच साथी जुड़ना चाह रहे हैं और भी। डोडी लोहारा से जुड़ना चाह रहे हैं डोमिनर नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी। नवाशहर पंजाब से है गंगनदीप थाटी, तीता कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत प्रियम, वामिका वाणी थांडी जी। और भी श्रोता साथी मोहल्ला पटियाला से जुड़ना चाह रहे हैं बत्ता परिवार के सदस्य कर्ण, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी। सरगाम छत्तीसगढ़ से है दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तन्वी, लख सोहिनी, मोहनती वरवेल सिंह जी। और भी श्रोता साथी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। पोटाकला दुर्ग से है संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं धरती तर से अंबर बरसे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाए

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था बागबान फिल्म का, धरती तर से अंबर बरसे बागबान रब है, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी श्रोता साथियों हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से, फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आपको बताना चाहूँगी सौदागर। गीत के बोल हैं ये इलू इलू क्या है। श्रोता साथियों, फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, पुष्पराज मरावी, निशा मरावी जी और ऋषभ मरावी जी, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं गर्ल्स द्वारा से यासिन हाशमी, बेगम हाशमी, तौसिफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। तैमूर हाशमी जी, आपको नाम बताना चाहूँगी, बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं। सदैव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शुभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली जी। कलकत्ता से जुड़ना चाह रहे हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता। जुमरे तलैया से अभि कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू। पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी, और भी दोस्त मेरठ से जुड़ रहे हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भवे जैन, अंशिका जैन, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। गंजू द्वारा से हैं शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लुकेश जोशी, पायल जोशी, गणेश तिवारी, सायंग सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये इलू इलू क्या है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

अगली फरमाइश का हमारा गीत आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी बागपत यूपी से। फिल्म का नाम है मस्ती, गीत के बोल हैं दिल दे दिया है जान तुझे देंगे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, सादिक अली खान, सारिक अली खान और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामदान कश्यप, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, शुमन देवी जी, कॉपर गांव से हैं सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े, मानसी मालोड़े जी, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, रजन शाह, सुषमा कपूर जी, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी, छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मनहरण वर्मा जी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मैं अगर सामने दिल दे दिया है जान भी तुझे देंगे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आए हैं बोड़खरा पितरामल से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आपको बताना चाहूंगी राज। गीत के बोल है मैं अगर सामने आ भी जाऊं। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं विनोद मोड़ा, देहा जी, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मोड़त जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंजू द्वारा से शमशिल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुसारी कलीम अंसारी जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आशीर्वास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। जुड़ना चाह रहे हैं खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउलक अब्दुल रहमान डावर, उमर डावर जी और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अज्जल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी, अजित खसाना, माया देवी, ऋतिका आदित्य खसाना, ये मुरादाबाद से हैं। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं मैं अगर सामने आ भी जाऊँ। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है यवतमाल से। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत के बोल भी यही है श्रोता साथियों। बताना चाहूँगी, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मंजू लोखंडे, रामहरी लोखंडे, सुरेल लोखंडे, सुरमित लोखंडे जी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी, और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं उमाली महाराष्ट्र से, उद्धव पाटिल, अनूप कुमार, पलसी, विजय शोगेकार और जयश्री जी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर, यवतमाल से निशा रानी नागरिकल, निनेश नागरिकल, आदा वर्पिता जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हम दिल दे चुके सनम।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है जब वी मीट, गीत के बोल हैं आओगे जब तुम ओ साजना। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, संतोष, पांडुरंग कुम्हार जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। जाखुद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनरलाल खटी, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत को। गीत के बोल हैं आओगे जब तुम हो साजना।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत आया है दादरी गेट भिवानी से। फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूंगी, बाजीराव मस्तानी। गीत के बोल हैं आयत। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। राजस्थान जोधपुर से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी और हिमाक्ष जी। वसीम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं, मास्टर विठल सुरुषे, सुषमा सुरुषे, प्रदीप सुरुषे, मायरा सुरुषे जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं मधुबनी बिहार से, शबीर परवाना, शाही जल्दी, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से हैं रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रजना, बदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। जफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, देशमुख जी, जगुतर राज यादव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सानवी देशमुख जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं आयत की तरह।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपके मन पसंद के गीत संगीत आपको सुनवाते हैं। तो अगर आप भी आपकी पसंद के गीत संगीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है इलाका, गीत के बोल हैं देवा ओ देवा गणपति देवा। फरमाइश करता है इस गीत की नांदुरा से है संतोष वशानी, उषा वशानी, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक। नासिक से है विशाल, सोनाली, समर्पण और भक्ति। महाराष्ट्र से है PS, निर्मला, विशाल, नारायण इंग्ले, सोपांता एडे और आशीष। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से है शंकरलाल जायसवाल, गणेशराज जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। उत्तराखंड से है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेर, मेजरा जहां। खेल बाजार पानीपत से है नीटू मनोत्रा, नरेश मनोत्रा, नीटू, लक्ष्मण मनोत्रा, लाडू गोयल मनोत्रा, बापाजी नानक चंद मनोत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतांग से है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविका सिक्का। सिरसा से है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है देवा ओ देवा।

0: हमसे बढ़ कर कौन,
1: हाँ
0: हमसे बढ़ कर कौन, सेवा हो सेवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर कौन, स्वामी तुमसे

भगत भी मिलते हैं, भेद बदल करते भक्तों का जो भगवान।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है चितचोर, गीत के बोल है गुरी तेरा गांव का बड़ा प्यारा। फरमाइश करता है इस गीत की भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। नारकली बाजार जंगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मनोत्रा, गव्या मनोत्रा, सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव। खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, हरीश कुमार बिडवे। अमरावती से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे। कलारून से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोरी। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद शहीद अब्बासी, निकस परिन अब्बासी, सनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अबान, पूरा अब्बासी परिवार। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है परवरिश। गीत के बोल हैं जाते हो जाने जाना। फरमाइश करता है इस गीत के सहारनपुर से हैं सैयद मसरून, साइना हसन, अक्सारीफ, नाजी आफिया, इब्राहिम सद्दाब। महाराष्ट्र से ननकिशोर घट्टी, संगीता साक्षी, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, जयश्री मैत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीपी कुलथे। यवतमाल से हैं राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतना, रोशनी, बीबी प्रियांशी। गिरडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंसाना, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिसरा नवाज, बीबी चाहत। अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई, प्रणय प्रसिद्धि, रावण शिंदे और प्रतिभा गुड़ाने। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं साथियों, नाम बता दें आप सभी को। शिवाजी जो कटनी से हैं, अनिल, अमर, दिलीप, राजू, रंजन, विपिन, प्रकाश, अरुण, संजय, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या। मोहाली पंजाब से भवन मनोत्रा, ओम प्रकाश मनोत्रा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जाते हो जाने जाने।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल है नजर के सामने जिगर के पास। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पुड़वाल और कुमार शानू ने। फरमाइश करता है इस गीत के नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका प्रशांत प्रीमियम, बीबी वामिका वाणी थांदी और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। दुलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राशल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। मुकेश भट्ट, नीलम भट्ट, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश भट्ट, ये सभी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरवान, सलवान इरफान, इशरार, नरगिस खातून। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबीसीया जाधव, जलाना शहर से है सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुषमा जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। सहारनपुर से है जोन, रोजी, पर्ल, विलीश। टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, सुजाता शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल है ना कचरे की थार। फिल्म का नाम है मोहरा। फरमाइश करता है इस गीत की कोरबा छत्तीसगढ़ से है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जोगेंद्र गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहोदरी बाई मरकान, मनमोहन सिंह गिरजाबाई मरकाम और चंद्रपाल मरावी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं साथियों, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, सोंगा छत्तीसगढ़ से हैं ये, वंशुडवारा से हैं शमशुल कमर राही, साहिन फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं बेबी शालिया डावर, हलीमा डावर, चिकरा डावर, खंडवा से हैं शेख सईद रही और अनस भाई, उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर किल्लू परवेज, बेगम राना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव, चौराहा यूपी से है सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सोलोनी, संजू लल्ला, पूजा पिंकी, बाबू शिवा, शिवानी चौरसिया, पवन गोड। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। गीत की बोल है जीता था जिसके लिए, फिल्म का नाम है दिलवाले। फरमाइश करता है इस गीत की, अर्जुनपुर से है बसंतलाल शाव, मुन्नी देवी शाव और जयप्रकाश, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार और बीके सिन्हा और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजू शाहू, हेमंत नामदेव धर्मदास। अनुरोध करता है, आगरा से है श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर अबीर, कानपुर से है सुजाता चौरसिया और पंकज चौरसिया, भाटापारा छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, बेबी वेदही जोशी, हंसिका जोशी, शिवास, लक्ष्मी ध्रुव। खंडवा मध्य प्रदेश से है अब्दुल गफार डावर जी, बदसर से है पूनम नायडू जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है जीता था जिसके लिए।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत की बोल है जब छाए तेरा जादू। फरमाइश करता है इस गीत की गजरवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फिजान खान, ताबिश खान और अदाब खान। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपकी अपनी दोस्त जागृति लेकर हाजिर हूँ आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7:00। श्रोताओं बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगे करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के में। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:00 सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9:00 हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज।
1: आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी।
0: साथियों आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10:00 और 10:00 कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:00 और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है, तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं यह तो थी हमारी आज की प्रातः कालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

ये सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आप

0: मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलेस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हमरा अपनावी, जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में, जहां हम आज बात करने वाले हैं हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे और हमारी सेहत की। हम अक्सर बच्चों के पोषण की तो बात करते हैं, इस समय पर दाल सब्जी फल दूध अनाज पर हमें कैसे ध्यान देना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है श्रोता साथियों कि पानी भी बच्चे के पोषण और अच्छे स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है। जी हाँ श्रोता साथियों, शरीर को स्वस्थ रखने, पढ़ाई में मन लगाने, खेल कूद में सक्रिय रहने और गर्मी या बरसात के मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त और साफ पानी बहुत जरूरी है। इसी विषय के बारे में आज कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहने वाली हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं पानी भी बच्चों के पोषण और अच्छे स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है। तो आज हम कार्यक्रम में जानते हैं कि बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल क्यों जरूरी है, पानी की कमी से क्या परेशानियां हो सकती है, और परिवार पानी को सुरक्षित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो सबसे

0: तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय बताया हमें, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या पानी भी पोषण का हिस्सा है?
1: बिल्कुल, पानी पोषण का मुख्य हिस्सा मान सकते हैं अपन। वैसे आप हम सभी को बताए कि एक संतुलित आहार के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और साथ में हमको जल को जोड़ना ही पड़ेगा। जल के बिना ये सभी उनका सबका जो मेटाबॉलिज्म वो नहीं हो पाएगा और बिना जल के वो पचेंगे भी नहीं।
0: बिल्कुल,
1: तो जल मुख्य हिस्सा है पोषण का।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि पानी भी पोषण का हिस्सा ही है, यही बच्चों को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो खेल कूद के चक्कर में, अपने जो रुचि के कार्य हैं उनके चक्कर में, मोबाइल में गेम खेलते समय, ऐसी चीजें करते समय वो पानी समय समय पर नहीं पीते हैं। तो बच्चों को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और माता पिता इस बात का कैसे ध्यान रखें?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। एक्चुअली बच्चों के पानी पीने का जो आधार है वो निर्भर करता है उसकी एक्टिविटी के ऊपर, उसकी उम्र के हिसाब से। अपन यूनिसेफ के आदर्श मापदंड को देखें अगर अपन, तो 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको 1.3 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 से 8 वर्ष के बच्चों को लगभग 1.5 लीटर, 1.7 लीटर के आसपास, 9 से 13 वर्ष के बच्चों को 2.5 लीटर पानी के आसपास पीना चाहिए और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 लीटर से लेकर के 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। इसमें वो पानी भी शामिल होगा अगर बच्चे ने जूस लिया है सुबह, या कोई फ्रूट्स खाया है, या दूध पिया है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर कहें कि एक आदर्श आंकड़ा है ये यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया, तो इसके आधार पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कम से कम इतना पानी तो पिए, अगर नहीं पिया है तो उसको याद करके उसको पिलाएं।
0: बिल्कुल, तो सर अगर कम पानी अगर बच्चा पीता है तो उससे क्या समस्या हो सकती है?
1: देखिए, हमारे जो शरीर है वो उसका निर्माण 60 से 70% जल से ही हुआ है। अगर हम हमारे शरीर के वजन को भी नापें तो 70% पानी माना जाता है। अब जब पानी ही शरीर का आधार है तो बिना पानी के शरीर को चलाना संभव नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: अगर सामान्य विज्ञान की भाषा में कहूँ तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है, और अगर पानी कम पिएगा तो डिहाइड्रेशन तो होना ही है। और अगर मैं जीव विज्ञान की भाषा में और बात करूं तो हमारे जो सेल्स हैं वो सूखने लगेंगे, वो ड्राई होने लगेंगे, और इससे बच्चे के अंदर या जो भी पानी कम पी रहा है उसमें समस्याओं का की शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि उबाल कर पानी पीना कब जरूरी होता है?
1: ये निर्भर करता है पानी का स्रोत क्या है हमारा। जैसे हमारे घर पे जो पानी आ रहा है, जो हमारा जल विभाग पानी भेज रहा है, वो अगर आरओ वाटर है, वो पानी शुद्ध है, तो यहाँ उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बोरिंग का पानी पी रहे हैं या कुएं का पानी पी रहे हैं, हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, तो इन दिनों में बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो नया पानी आता है उसके साथ मिट्टी आती है, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में पानी को उबाल करके पीना चाहिए। वैसे भी अपन कहते हैं कि 4 महीने जो बारिश के होते हैं उसमें सावधानी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो निश्चित तौर पर पानी को उबाल करके पीना चाहिए। अगर हमारा पानी का जो सोर्स है वो प्रदूषित है या पानी खराब आ रहा है तो हमें पानी को उबाल करके पीना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि दूषित पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम किसी को भी जाकर बोले कि आप पानी उबाल कर पिए वरना बीमारियां हो जाएंगी, तो वो इंसान बहुत सी बार तो विश्वास कर लेता है, लेकिन कुछ उसमें से होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो पीते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वाकई में कि वो इंसान सही बात कह रहा था, पानी मुझे उबाल कर पीना चाहिए। तो दूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है?
1: बिल्कुल सही पूछा आपने अंजलि जी। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा पढ़ने में आता है कि 80% जो बीमारियां हैं वो दूषित जल से ही होती हैं। संक्रामक रोग जल के द्वारा ही फैलते हैं, तो अगर हम जल को शुद्ध कर लें तो काफी हद तक कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब जैसे आम धारणा है कि पानी उबाल के क्या करना है, तो थोड़ा सा हम इस चीज को इग्नोर भी करते हैं, थोड़ा अज्ञानता भी, थोड़ा प्रचार प्रसार का भी अभाव है, और शुरू से ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ठीक है पानी तो पीना, तो छान करके पी लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर उसको उबाल करके पी लें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन बीमारी है अमीबियसिस, डायरिया पैचेस जिसको अपन बोलते हैं, हैजा हो गया, थोड़ा और क्रिटिकल अगर हो जाता है हेपेटाइटिस ए और ई हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसी कई सारी बीमारियां जो दूषित जल के द्वारा फैलती हैं।
0: जी सर, आपने सही कहा, यही जानना चाहूंगी कि क्या पानी की कमी से बच्चों की पढ़ाई और खेल पर असर पड़ता है?
1: बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उपापचय जो क्रिया है वो स्लो हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया है या प्रोटीन आपने खा लिया है या खाना आपने खा लिया है, उस खाने को पचाने के लिए जैसे कि हमारे विटामिन हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलने वाले एक वसा में घुलने वाले। तो अगर हमने खाने में विटामिन लिए भी हैं लेकिन जल हमने नहीं पिया है तो जल में घुलना विटामिन

0: हम कैसे करेंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक। इसी प्रकार से कई ऐसे खाने पीने की चीजें जो डिजोल्व होने के बाद ही हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है, तो पानी की कमी से बहुत सारे चीजें अब्सॉर्ब नहीं होंगी, अवशोषित नहीं होंगी, तो बच्चा या जो भी जिसके पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो कमजोरी महसूस करेगा, उसको चक्कर आएंगे। इसके अलावा उसका कंसंट्रेशन है वो कम रहेगा, उसको थकान लगेगी, सिर दर्द होगा। कई बार हम देखते भी प्रेयर में बच्चा गिर जाता है, तो हम उसको जो पानी वानी पिलाते थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको पसीना ज्यादा होने लगेगा अचानक, यूँ कह सकते बीपी थोड़ी सी बढ़ेगी, ऐसा भी हो सकता है, पर ये सब मेडिकल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अल्टीमेटली कह सकते कि बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं।
1: बिल्कुल यही सर, ओआरएस का सही उपयोग कब करना चाहिए?
0: ओआरएस नॉर्मली जब किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है तब हम ओआरएस देते हैं। ओआरएस देने के लिए नॉर्मली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कोई कोई इलेक्ट्रोलाइट लाइट लीजिए या ओआरएस पीजिए, तब उसको दिया जाता है। या किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तब हम उसको ओआरएस दे सकते हैं। या बच्चों को लगता है कि आज बहुत थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, या अंदर से उसको लग रहा है कि मैं कुछ नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो उसको ओआरएस देकर के एनर्जी को अभी बूस्ट किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सर, यही अब जानना चाहूंगी कि बरसात के मौसम में पानी को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है।
0: जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि बरसात के मौसम में जो पानी आता है वो नया पानी आता है, और नया पानी जब आता है तो उसके साथ में मिट्टी भी आती है, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, अशुद्धियां आ जाती हैं। तो नॉर्मली हम अगर हमारे घर पे कोई फिल्टर प्लांट लगा हुआ है तो फिल्टर पानी पिए। कुछ मार्केट में बाल्टी वगैरह मिलती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ नहीं है तो हमें पानी को उबाल करके उसके बाद को ठंडा करके छान करके किसी साफ बर्तन में भर करके या बोतल में भर कर रख लेना चाहिए, उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार पीना चाहिए।
1: बिल्कुल यही अब सर हम देखते हैं कि बहुत से बार जो बच्चे हैं वो घर से बाहर जाते हैं कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए जिद करते हैं, तो ऐसे में कोल्ड ड्रिंक की जगह हम बच्चों को क्या दे सकते हैं?
0: हाँ, कोल्ड ड्रिंक पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम कोल्ड ड्रिंक को पानी के बदले में काम में लें, ये जैसे किसी को प्यास लग गई उसने कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो हो सकता है 2-5 मिनट के लिए ऐसा हो जाए, लेकिन वो बॉडी को नुकसान कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, सबसे अधिक बात होती है शक्कर, चीनी उसमें ज्यादा होती है, और हम जानते हैं कि चीनी है वो दांतों से लेकर के आंतों तक नुकसान पहुंचाती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे को लगता है जरूर एक बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा एडेड केमिकल्स भी उसमें होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक तो रिकमेंड किया ही नहीं जा सकता पानी के बदले में। अब पानी के बदले हम क्या दें, तो उसके लिए हम बच्चे को सादा पानी दे सकते हैं, नॉर्मल पानी, मटके का हो गया, पोर्टेबल वाटर हो गया।
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा हम दूध दे सकते हैं, या कम शक्कर के या थोड़ा नमक डाल करके, थोड़ी शक्कर डाल करके और नींबू का शरबत अपन दे सकते हैं। इसके अलावा छोटा बच्चा है तो उसको दाल का पानी पिलाया जा सकता है, मतलब उबली हुई दाल का पानी पिलाया जा सकता है, फलयुक्त पानी या जूस पिलाया जा सकता है। ऐसे सब्स्टिट्यूट हमारे घर में अवेलेबल है मैडम, उसी को हम यूज कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या मिट्टी के घड़े का जो पानी है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है?
0: देखिए मैडम, पानी के गुण है वो पात्र पर निर्भर नहीं करते हैं। हमने कई बार हम पढ़ते हैं तांबे के पात्र में पानी भरना चाहिए, तो वो असर करता भी होगा तो उसके जो असर करने का परसेंटेज है बहुत कम होता है, आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब बात आती है मटके के पानी की या मिट्टी के घड़े के पानी की, तो परंपरागत हम हमारे घरों के अंदर शुरू से मटके का पानी पीते आए हैं, और मटके का पानी हमारे हम यूज टू हो चुके, उसकी आदत में आ चुका हमारे। ऐसे कंडीशन में मटके का पानी पीना मतलब अच्छा माना जाए, क्योंकि पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, न बहुत ज्यादा ठंडा होता है न बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो प्राकृतिक एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सूटेबल होता है। लेकिन मटके के पानी से कोई फायदे होंगे ऐसा कहना शायद संभव नहीं हो पाएगा कि उससे फायदा होगा, पर हाँ मटके का पानी में अगर हम पानी को मटके में भर रहे हैं तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी कि मटके को नियमित रूप से सुबह शाम जब पानी भरने से उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें, ऐसा नहीं हो जाए कि मटके के पानी के अंदर कहीं काई जम जाए या कोई एल्गी जम जाए और हम उस पानी को पिए जा रहे हैं, तो मटका भी साफ होना जरूरी है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम परिवार में पानी के पोषण की बातें कर रहे हैं, तो यही परिवार किन गलतियों को करने से बच्चे जो बच्चों को संक्रामक रोगों से दूर करें?
0: देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या कि खेलने जा रहा है, तो वहाँ पे जो सार्वजनिक पानी की टंकियां होती हैं जिनके साफ होने की संभावना थोड़ी कम रहती है, कई जगह होती भी है साफ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ साफ नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन साफ जहाँ नहीं होती है तो बच्चों को पता चलता नहीं होता, यहाँ नल लगा हुआ पानी पी लेगा, अब उस नल से कितने लोगों ने पानी पिया है, कौन से गंदे हाथों से पानी नल की टोटी को खोला है, तो ऐसी जगह पे पानी पीने से बचना चाहिए। बरसात के दिनों में, आम दिनों में पानी को बिल्कुल साफ पात्र के अंदर पानी को छान करके, उबाल करके, छान करके ही काम में लेना चाहिए। अगर हमारे पास फ्रीज है तो पानी को फ्रीज में रखा जा सकता है, पर उस टेम्परेचर के पानी को जब पिए तो उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम, मतलब बढ़ा लें, एकदम ठंडा पानी ना पिए, ये हमें बहुत जरूरी है। इसके अलावा घर में ORS जरूर रखें, और ORS कोई इतना महंगी कोई चीज नहीं है कि हम नहीं रख सकते, हम घर पे बना सकते हैं। नमक का घोल ले लिया, लेकिन देखा जाए तो घर के अंदर हमें साफ बर्तन में, साफ गिलास में पानी पीना होगा। बच्चों को हाथ धोकर के मटके को या पात्र को हाथ लगाने की अनुमति देनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने ढेर सारी बातों से हमें अवगत करवाया है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल में स्वच्छ पेयजल कितना जरूरी है बच्चों के लिए।
0: जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चा स्कूल के अंदर 24 घंटों में से कम 6 से 8 घंटे रहता है, उस समय वो खेलता भी है, उस समय उसको पानी की जरूरत भी, क्लास लगती है तो पढ़ता भी है उस समय। तो बच्चों को स्कूल में पानी, शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। ये महती आवश्यकता है कि बच्चों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए।
1: बिल्कुल,
0: और स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जाती है और की भी जा रही है, लेकिन फिर भी माता पिता अगर चाहें, और करते भी हैं माता पिता, कि बच्चे को अपने पानी की साफ सुथरी बोतल में पानी भर के देते हैं, वो और बच्चे उस पानी को पीते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो खत्म होने पर ही वो स्कूल का जो पानी का सोर्स है वहाँ से पानी को भरते भी हैं।
1: जी जी,
0: तो माता पिता को ध्यान देना कि बच्चे को रोजाना पानी देना ना भूले।
1: बिल्कुल सर, तो यही जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें रही है कि किस तरीके से पानी भी पोषण का हिस्सा ही है, और माता पिता को किस बात का ध्यान रखना है, स्कूल में किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बरसात के मौसम में हम पानी का व्यवस्थित तरीके से उपयोग कैसे करें। तो यही अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले मैं वागड़ रेडियो को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपनी बात रख सकूं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर जल शुद्ध है तो हमारा स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, और हमें जो दवाइयों के पीछे पैसा खर्च करना पड़ता है वो हम खर्च हमें नहीं करना पड़ेगा। प्लस अच्छा पानी पीने से हम जब रिहाइड्रेट रहेंगे, यानी कि पानी से हमारा शरीर भरा रहेगा, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी का नियमित सेवन करें, प्लस बच्चों को इसकी आदत डालें कि वो समय समय पानी को पीते रहें, प्यास लगने का इंतजार नहीं करें।
1: जी बिल्कुल सर, तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू।
1: श्रोता साथियों, विशेषज्ञ की बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ है कि बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन ही नहीं बल्कि साफ पानी, सुरक्षित और पर्याप्त पानी भी उतना ही जरूरी है। हमारे घर में पानी कहाँ से आ रहा है, उसे किस तरह रखा जा रहा है और बच्चे उसे किस बर्तन से पी रहे हैं, ये छोटी छोटी सावधानियाँ कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत जरूर अपनाएं, बच्चों को साफ पानी पीने के लिए प्रेरित करें, पानी को ढककर रखें और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से परिवार को सुरक्षित रखें। और याद रखिए, साफ पानी की हर घूट स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव होती है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

भाई ने बोलो घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है माँ ने दुआ पिता ने उम्मीद ने सोरनी मुस्कान होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित थारी में पासो लावो जोनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है श्रोताओं, किसी की परेशानी को छोटा न समझे, सुने समझे और साथ दे।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि कशिश हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कभी कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में कोई ऐसी चिंता चल रही होती है जिसके बारे में वो किसी से कह नहीं पा रहा होता।
0: बिल्कुल।
1: हम अक्सर किसी की परेशानी को बाहर से देख कर ये मान लेते हैं कि इतनी सी बात है, इसमें परेशान होने जैसी क्या बात है, लेकिन जो बात हमें छोटी दिखाई देती है वही दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: हर व्यक्ति की परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और भावनाएं अलग अलग होती है, इसीलिए किसी की परेशानी का आकार हमें नहीं बल्कि उसे महसूस करने वाले व्यक्ति को पता होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारे इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि किसी की परेशानी को हमें छोटा नहीं समझना है, बल्कि उसे सुनना है, पूछना है और साथ देने की कोशिश करनी है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, कहा जाता है कि हर मुस्कान के पीछे खुशी हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी कोई चुप रहकर भी श्रोता साथियों बहुत कुछ कह रहा होता है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब हम परेशान होते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव होता है, तो कभी करियर को लेकर चिंता, तो कभी परिवार की कोई समस्या हमें परेशान करती है।
1: जी हाँ।
0: कभी दोस्ती या रिश्तों में आई दूरी है, तो कभी आर्थिक परेशानी, तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, बाहर से देखने वाले व्यक्ति को शायद वो परेशानी छोटी लग सकती है, लेकिन जो इंसान उससे गुजर रहा होता है उसके लिए वही बात बहुत बड़ी हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: यहीं से जागृति जी, हमारे व्यवहार की असली परीक्षा शुरू होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, किसी की परेशानी को छोटा समझने के बजाय उसे सुनना, समझना और उसका साथ देना इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान होती है।
0: बिल्कुल।
1: कई बार समस्याओं का समाधान तुरंत हमारे पास नहीं होता, फिर भी हमारा धैर्य से सुनना सामने वाले को यह एहसास करा सकता है कि वो अकेला नहीं है।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि हम मनुष्य प्राणी सामाजिक प्राणी है और जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता ही है। किसी के सामने आर्थिक समस्या हो सकती है, किसी को परिवार की चिंता हो सकती है, कोई पढ़ाई या काम को लेकर परेशान हो सकता है, तो कोई अपने रिश्ते या भविष्य को लेकर चिंतित हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: समस्याएं अलग अलग होती है श्रोताओं, लेकिन हर परेशानी के पीछे एक इंसान और उसकी भावनाएं भी होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर बात करें तो किसी की परेशानी सुनकर दोस्तों तुरंत ये कह देना कि अरे इतनी सी बात के लिए कौन परेशान होता है, या इससे बड़ी बड़ी समस्याएं तो लोगों के सामने आती हैं।
1: बिल्कुल
0: ये सुनने में शायद हमें सामान्य लग सकता है, लेकिन सामने वाले को यह महसूस करा सकता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी की परेशानी को उसके आकार से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की स्थिति और भावनाओं से समझें। दोस्तों हम देख सकते हैं कि दो दोस्तों को एक ही परिस्थिति में अगर डाल दिया जाए, फिर भी दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। किसी विद्यार्थी के लिए परीक्षा में कम अंक आना बहुत बड़ी चिंता हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: जबकि दूसरे विद्यार्थी को वो काफी आसान लगेगी। किसी युवा के लिए नौकरी न मिलना चिंता का कारण हो सकता है, तो किसी दूसरे युवा के लिए परिवार की अपेक्षाएं सबसे बड़ा दबाव हो सकती है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर परेशानी समान है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति को अलग तरह से अनुभव करता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है जब कोई अपनी समस्या बताता है तो हम तुरंत उसकी तुलना अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या से करने लगते हैं। हम कह देते हैं हमने तो इससे भी ज्यादा मुश्किलें देखी है।
0: बिल्कुल।
1: ये तो बहुत छोटी बात है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सामने वाले को समझना हो सकता है श्रोताओं, लेकिन ऐसे शब्द कभी कभी उसकी भावनाओं को और अकेला कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जरूरत इस बात की श्रोताओं कि हम तुरंत निर्णय देने के बजाय पहले ध्यान से सुने। सुनना केवल कानों से शब्द सुन लेना नहीं है, सुनने का अर्थ है सामने वाले को अपना मन व्यक्त करने का अवसर देना।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को साझा करता है कशिश, तो उसे हमेशा सलाह की जरूरत नहीं होती है। कई बार वो केवल ये चाहता है कि कोई उसे बिना डोके, बिना मजाक उड़ाए और बिना उसकी तुलना किसी और से किए बिना सुन ले।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि किसी की परेशानी को हमें छोटा नहीं समझना है, बल्कि सुनकर पूछकर उसका साथ देना है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ सुनवाते हैं दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: जाने हैं।
1: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और गीत से पहले हमारी बातें चल रही थी, हम बात कर रहे थे किसी की परेशानी को छोटा न समझे, सुने समझे और साथ दे।
2: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, हर परेशानी की अपनी एक कहानी होती है। दो लोगों के सामने एक जैसी परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन दोनों उस परिस्थितियों को अलग तरह से महसूस भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: किसी के लिए छोटी लगने वाली बात तो दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए श्रोताओं, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी की परेशानी का फैसला केवल बाहर से देख कर कर दें।
2: बिल्कुल,
1: जैसे किसी बच्चे के लिए परीक्षा में कम अंक आना बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, किसी युवा के लिए भविष्य और करियर को लेकर अनिश्चितता परेशान कर सकती है, किसी माता पिता के लिए बच्चों की पढ़ाई या रोजगार की चिंता महत्वपूर्ण हो सकती है, बुजुर्गों के लिए परिवार से बातचीत और अपनापन बहुत मायने रखता है। इन समस्याओं की तुलना करके ये कहना उचित नहीं है कि किसी की परेशानी बड़ी है और किसकी छोटी है। सही दृष्टिकोण यह है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति को उसकी नजर से समझने की कोशिश की जाए।
2: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमें उसकी समस्या का समाधान देना होगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। कई बार साथियों, सामने वाला सिर्फ चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने। जब कोई दोस्त आपसे अपनी परेशानी को साझा कर रहा होता है तो मोबाइल एक तरफ रख देना, उसकी बातचीत बीच में न काटना और तुरंत सलाह देने के बजाय पहले उसकी बात पूरी सुनना, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो काफी मायने रखती है।
1: जी हाँ,
2: कई बार हमें पता नहीं होता जागृति जी कि हमारा दोस्त परेशान है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद वह खुद ही ठीक हो जाएगा। हम पूछते नहीं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं वह हमारी बात का बुरा न मान जाए।
1: जी हाँ,
2: लेकिन साथियों, प्यार, दोस्ती और इंसानियत में एक छोटा सा सवाल बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और वो सवाल है, तुम ठीक हो? और अगर जवाब आए कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको लगे फिर भी साथियों कि शायद वह सच नहीं है, तो आप धीरे से कह सकते हैं कि अगर कभी बात करने का मन हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे जागृति जी, सामने वाले पर बात करने का दबाव भी नहीं पड़ता और उसे हमारा साथ जो है वो अच्छे से महसूस होता है।
1: बिल्कुल,
2: हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि किसी की परेशानी पूछना और उसके निजी जिंदगी में जबरदस्ती दखल देना दो अलग अलग बातें होती हैं।
1: जी हाँ,
2: हमें संवेदनशील रहना है लेकिन उसकी निजता और सीमाओं का भी सम्मान करना है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि परिवार वो स्थान है जहाँ व्यक्ति सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए श्रोताओं, परिवार में एक दूसरे की बात सुनने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: बच्चा अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो उसे केवल ये कहकर चुप नहीं कराना चाहिए कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें क्या चिंता, उसकी बात सुननी चाहिए। युवा अगर भविष्य को लेकर उलझन में है तो केवल डांटने के बजाय उसकी बात को समझने का प्रयास करना होगा। बुजुर्ग अगर अपनी परेशानी बताते हैं तो उसे उम्र का प्रभाव मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल
1: साथियों, परिवार में संवाद जितना मजबूत होगा, सदस्यों के बीच विश्वास भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ कशिश, हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि पड़ोसी और समुदाय भी हमारे सहारा होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: एक मजबूत समुदाय वही होता है जहाँ लोग केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आसपास के लोगों की परेशानियों को भी समझते हैं।
2: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि गांव या मोहल्ले में अगर किसी परिवार के सामने कठिन परिस्थिति है तो लोग मिलकर उसका सहयोग कर सकते हैं। किसी को सरकारी योजना की जानकारी चाहिए तो जानकारी साझा की जा सकती है। किसी को किसी सेवा या संस्था तक पहुंचने में सहायता चाहिए तो सही दिशा बताई जा सकती है। समुदाय में एक दूसरे का साथ विश्वास पैदा करता है श्रोताओं, और यही विश्वास आगे चलकर पूरे समाज को मजबूत बनाता है।
2: जी हाँ जागृति जी, साथ ही हम देखते हैं कि युवाओं के बीच में एक सोच अक्सर देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें उसकी समस्या का समाधान भी निकालना होगा, लेकिन हर समस्या का समाधान हमारे पास नहीं होता। अगर आपका दोस्त करियर को लेकर परेशान है तो आप उसका पूरा भविष्य तय नहीं कर सकते साथियों। अगर कोई परिवार की समस्या से गुजर रहा है जागृति जी, तो हम उसकी पूरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। अगर कोई पढ़ाई के दबाव में है तो हम उसकी जगह परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन दोस्तों आप उसके साथ बैठ सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं, उसे सही व्यक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद बड़े, शिक्षक या विशेषज्ञ से बात करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे में हमें ये याद रखना है कि किसी की परेशानी को छोटा समझने से वो परेशानी छोटी नहीं हो जाती, लेकिन उसे समझने और सुनने से उस व्यक्ति का बोझ जरूर थोड़ा कम हो जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि शब्दों की ताकत को हमें समझना होगा। हमारे शब्द किसी व्यक्ति को हिम्मत भी दे सकते हैं और निराश भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोताओं, किसी की परेशानी पर हंसना, उसे कमजोर कहना या उसकी तुलना दूसरों से करना उचित नहीं है। इसके बजाय हमें प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना होगा। एक सरल वाक्य है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। किसी कठिन समय में बहुत बड़ा भावनात्मक सहारा बन जाता है श्रोताओं। किसी की मदद करने के लिए हमेशा हमारे पास बहुत सारे संसाधन होना जरूरी नहीं है। कभी एक फोन कॉल, कभी कुछ समय की बातचीत, कभी सही जानकारी और कभी किसी जरूरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश भी मदद बन सकती है।
2: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा कि मदद का मूल्य उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद भावना से तय होता है।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे युवा साथियों को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आज के बातचीत में एक छोटी सी बात आप अपने साथ लेकर जाइए कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं, हर चुप रहने वाला इंसान ठीक हो ये भी जरूरी नहीं।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए अपने आसपास के लोगों को थोड़ा समय दीजिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए और बिना उनकी परेशानी को छोटा समझे उनसे पूछिए, सब ठीक है, अगर कोई बात है तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखिए युवा साथियों, हमेशा समाधान देना जरूरी नहीं, कभी कभी किसी के साथ खड़े रहना भी सबसे बड़ी मदद हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अंत में कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी एक अदृश्य कहानी लेकर चल रहा होता है। किसी के चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान उसके मन की पूरी तस्वीर नहीं बताती है। इसीलिए श्रोताओं, किसी की परेशानी को छोटा समझने से पहले हमें एक पल रुककर सोचना होगा कि शायद उस व्यक्ति के लिए वो परिस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होगी। हमें हर समस्या का समाधान देना जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को सम्मान से सुनना, उसकी भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उसका साथ देना हमारे हाथ में जरूर होता है। इसीलिए एक संवेदनशील समाज वो नहीं जहाँ किसी को परेशानी न हो, बल्कि वो है जहाँ परेशानी के समय व्यक्ति खुद को अकेला महसूस न करे।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने व्यवहार में एक छोटा सा बदलाव जरूर लाइए। किसी की परेशानी को छोटा नहीं समझे, उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करें और जहां संभव हो उसके साथ खड़े रहे। क्योंकि कई बार किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़ी मदद नहीं, बस एक संवेदनशील कान, समझने वाला दिल और साथ देने वाला हाथ ही काफी होता है।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है अब हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
2: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं शांति से ही मजबूत परिवार, गांव और समाज को लेकर। किसी घर की असली खूबसूरती उसकी बड़ी दीवारों, महंगे सामान या सुविधाओं से नहीं होती है, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों के बीच मौजूद प्यार, विश्वास और शांति से होती है। हम देखते हैं अंजलि कि जिस घर में बात बात पर विवाद हो, वहाँ सुख सुविधाएं भी मन को सुकून नहीं दे सकती। वहीं जिस परिवार में एक दूसरे की बात सुनी जाती है, गलतियों को समझा जाता है और समस्याओं का समाधान मिल बैठकर किया जाता है, वो परिवार कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं शांति से ही मजबूत परिवार, गांव और समाज किस तरह से हो। तो जैसा कि अंजलि, यही बात गांव और पूरे समाज पर लागू होती है। शांत परिवार मिलकर शांत और मजबूत गांव बनाते हैं और शांत गांव मिलकर मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। शांति केवल लड़ाई झगड़े का न होना नहीं है, शांति का अर्थ है एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, मतभेदों को बातचीत से सुलझाना, कमजोर का साथ देना और मिलजुल कर आगे बढ़ना। आज जब जीवन तेज हो गया, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी और मतभेद बढ़ते दिखाई देते हैं, तब हमें फिर से समझना होगा कि हमारे विकास की नींव केवल सड़क, बिजली, पानी और तकनीक नहीं, बल्कि आपसे विश्वास और सामाजिक शांति भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है शांति की शुरुआत परिवार से।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। बच्चे सबसे पहले परिवार से ही व्यवहार करना सीखते हैं। अगर जागृति जी, घर में बड़े लोग एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं, समस्याओं पर शांति पूर्वक चर्चा करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो बच्चे पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार में हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी पसंद होती है। माता पिता और बच्चे के विचार हमेशा एक जैसे हों यह जरूरी नहीं है। पति पत्नी, भाई बहन और अन्य सदस्यों के बीच भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, मतभेद होना गलत नहीं है। मतभेद को विवाद में बदल देना समस्या होती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी बात पर असहमति हो तो गुस्से की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। सामने वाले की बात पूरी सुनना, तुरंत प्रतिक्रिया न देना और समस्या के समाधान पर ध्यान देना परिवार में शांति बनाए रखने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि शांति केवल चुप रहने से नहीं आती। शांति तो तब आती है जब परिवार के हर सदस्य को लगता है कि उसकी बात सुनी और समझी जाती है। बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना, महिलाओं की राय को महत्व देना और परिवार के सारे सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना घर में विश्वास बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
0: जब परिवार में सम्मान होता है तो छोटी समस्या बड़ी लड़ाई नहीं बनती है। लोग अपनी परेशानी खुलकर बता पाते हैं और समाधान भी जल्दी निकालते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज के बच्चे कल के समाज के निर्माणकर्ता बनेंगे, इसलिए उन्हें केवल पढ़ाई और तकनीकी ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें धैर्य, सहयोग, सम्मान और संवाद के संस्कार भी देने होंगे। बच्चों को सिखाएं श्रोता साथियों कि किसी से असहमत

0: देखेगा तो सामुदायिक विकास मुश्किल होगा। लेकिन जब लोग सोचेंगे कि गांव की समस्या मेरी भी समस्या है, तब वास्तविक बदलाव शुरू होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि गांव के विकास में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा में अलग अलग विचार सामने आ सकते हैं। किसी को सड़क की आवश्यकता लग सकती है, किसी को पानी की, किसी को स्कूल या स्वास्थ्य सुविधा की। इन अलग अलग जरूरतों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन श्रोताओं, निर्णय लेते समय व्यक्तिगत विवाद के बजाय गांव के सामूहिक हित को प्राथमिकता देना जरूरी है। ग्राम सभा में सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिले और दूसरों की बातें भी सम्मानपूर्वक सुनी जाए तो लोकतांत्रिक भावना मजबूत होती है। और कहा गया अंजलि कि संवाद से समाधान निकलता है और समाधान से गांव मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत चल रही है, शांति से ही मजबूत परिवार, गांव और समाज को लेकर, तो बातें और भी आगे निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ग्राम सभा में संवाद और शांति को लेकर बातचीत की, यही बात करें छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकने की। तो श्रोता साथियों, अक्सर बड़े विवाद छोटी सी बात से शुरू होते हैं। खेत की मेड़, पानी का उपयोग, रास्ते को लेकर असहमति, लेन देन या पारिवारिक विषय, यदि समय रहते बातचीत से इन सारी चीजों को सुलझाया जाए या न सुलझाया जाए तो रिश्तों में दूरी पैदा हो जाती है। इसलिए समस्या को बढ़ने देने के बजाय समय पर बातचीत करना जरूरी है। यदि दो लोगों के बीच विवाद हो तो परिवार या समुदाय के समझदार लोग शांतिपूर्वक मध्यस्थता कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि विवाद जितना महत्वपूर्ण नहीं, रिश्ते बचाना, समाधान निकालना महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से हम किस तरह से रोक सकते हैं, यही जानते हैं कि अफवाहों से बचना भी सामाजिक शांति है। आज जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, हम सभी जानते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने संवाद को आसान बना दिया है, लेकिन गलत जानकारी भी तेजी से फैल सकती है। किसी संदेश को बिना जांचे आगे बढ़ना कभी कभी समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए श्रोताओं, किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचनी जरूरी है। सोशल मीडिया का उपयोग लोगों को जोड़ने, जानकारी देने और सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए किए जाते हैं, तो ये समाज के लिए उपयोगी माध्यम बन सकता है। साथ ही अगर युवाओं की भूमिका को लेकर बात करें तो युवा गांव और समाज की ऊर्जा है, ये हम सभी जानते हैं। उनके पास नई सोच होती है, तकनीकी ज्ञान होते हैं, बदलाव की क्षमता भी होती है। इसलिए सामाजिक शांति बनाए रखने में हमारे युवा साथियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम अगर आपसी विवादों में आग बढ़ाने के बजाय समाधान की पहल कर सकते हैं, हमारे युवा साथी डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, साथ ही स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता के अभियान में लोगों को जोड़ भी सकते हैं। तो अंजलि, कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि एक युवा अगर अपने व्यवहार में धैर्य और सम्मान अपनाता है तो उसका प्रभाव उसके दोस्तों और समुदाय पर भी पड़ता है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही बात आती है महिलाओं की सहभागिता से मजबूत समुदाय की।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, परिवार की शांति और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं परिवार और समुदाय के बीच मजबूत कड़ी का काम कर सकती हैं। जब महिलाओं को अपनी बात रखने, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है तो परिवार और समुदाय में संवाद के नए रास्ते खुलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: महिलाओं और पुरुषों दोनों की समान भागीदारी से सामुदायिक निर्णय अधिक व्यापक और संतुलित हो सकते हैं। गांवों में बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव होता है, उन्होंने जागृति जी अनेक परिस्थितियां देखी होती हैं और कई समस्याओं के समाधान अपने अनुभव से वे जानते हैं। बुजुर्गों की बात सुनना, उनके अनुभव का सम्मान करना समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं बुजुर्गों को भी बदलते समय और नई पीढ़ी की सोच को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब अनुभव और नई सोच साथ आते हैं तो समाज अधिक मजबूत बन पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही प्रकृति के साथ शांति की भी बहुत जरूरत है। जैसा कि शांति का संबंध केवल इंसानों के बीच नहीं है, प्रकृति के साथ संतुलन भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन गांव और समाज के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। श्रोताओं, पानी को लेकर विवाद, खेती की समस्या और पर्यावरणीय संकट समुदाय के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पानी बचाना, पेड़ लगाना, मिट्टी की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना भी सामाजिक शांति की दिशा में कदम है। साथ ही सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका होती है उसको लेकर हम बात करें तो समुदाय को जोड़ने में सामुदायिक रेडियो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, रेडियो के माध्यम से गांव के लोगों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई जा सकती है, जैसा कि वागर रेडियो भी इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाते हैं और समुदाय की आवाज को मंच दिया जा सकता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ग्राम सभा, सरकारी योजना और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाकर लोगों के बीच संवाद भी बढ़ाया जा सकता है। जब समुदाय के लोग अपनी बात रखते हैं अंजलि, दूसरों की बात सुनते हैं और समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो सामुदायिक भावना मजबूत होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कई बार लोग शांति को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में शांत रहना और सही समय पर सही बात कहना एक ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: गुस्से में लिया गया निर्णय समस्या बढ़ा सकता है, जबकि धीरे से लिया गया निर्णय समाधान की ओर ले जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: शांति का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं, इसका अर्थ है कि समस्याओं और मतभेदों का समाधान संवाद, कानून, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सम्मानजनक व्यवहार के माध्यम से किया जाए।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मजबूत समाज केवल सरकार या किसी एक संस्था से नहीं बनता, इसमें हर नागरिक की भूमिका होती है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, परिवार में सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना होगा, बच्चों को धैर्य और सहयोग सिखाना होगा, पड़ोसी से अच्छे संबंध रखने होंगे, गांव की बैठकों में शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी होगी,
1: बिल्कुल
0: अफवाहों से बचना होगा और जागृति जी सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी है। यही छोटे छोटे अच्छे व्यवहार मिलकर बड़े सामाजिक बदलाव का आधार बनते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि एक मजबूत परिवार वो नहीं जिसमें कभी मतभेद न हो, बल्कि वो है जो मतभेद के बाद भी एक दूसरे का हाथ थामे रखता है। एक मजबूत गांव वो नहीं जहां सभी की सोच एक जैसी हो, बल्कि वो है जहां अलग अलग विचारों के बावजूद लोग सामूहिक हित के लिए साथ खड़े होते हैं। और मजबूत समाज वो नहीं जहां कोई समस्या ही न हो, बल्कि वो है जहां समस्याओं का सामना शांति, संवाद, सहयोग और समझदारी से किया जाता है। इसीलिए श्रोता, हमें शांति को केवल एक शब्द नहीं बल्कि अपने जीवन का व्यवहार बनाना होगा। घर में बोलने से पहले सोचना होगा, सामने वाले की बात को सुनना होगा और छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकना होगा। आज अगर हम अपने परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाएंगे तो कल हमारे पड़ोस में विश्वास बढ़ेगा, पड़ोस से गांव मजबूत होगा और गांव से हमारा समाज मजबूत होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि शांति कोई दूर की मंजिल नहीं है, शांति की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। तो साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे, घर में संवाद रखे, रिश्तों में सम्मान रखे, गांव में सहयोग बढ़ाए और समाज में शांति की आवाज को मजबूत करें।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हुई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है दवाई समय पर लेना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें जाँच के बाद दवाई देते हैं। डॉक्टर दवाई की मात्रा के साथ साथ ये भी बताते हैं कि दवाई दिन में कितनी बार और किस समय लेनी है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर से दवाई ले ली तो क्या फर्क पड़ेगा। कभी काम में व्यस्त होने के कारण दवाई छूट जाती है, कभी तबीयत थोड़ी ठीक लगने पर हम दवाई बंद कर देते हैं और कभी याद ही नहीं रहता कि दवाई कब लेनी थी। लेकिन श्रोता साथियों, क्या दवाई को अपनी सुविधा के हिसाब से लेना सही है? नहीं, दवाई का सही समय है, सही मात्रा है और इस तरीके से जब हम दवाई लेते हैं तो इलाज महत्वपूर्ण हो पाता है। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि दवाई समय पर लेना क्यों जरूरी है, दवाई बीच में छोड़ने से क्या परेशानी हो सकती है और दवाई लेते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी बातों को हम जरूर जानेंगे, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं दवाई समय पर लेना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम रोज के काम है वो बिना परेशानी के कर सके, लेकिन कई बार श्रोता साथियों बीमारी, कमजोरी, किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण डॉक्टर हमें दवाई लेने की सलाह देते हैं। दवाई बीमारी को ठीक करने, उनके लक्षणों को कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, केवल दवाई लेना ही पर्याप्त नहीं है, दवाई का सही समय, सही मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना भी उतना ही जरूरी है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कई लोग दवाई को शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी समय पर लेते हैं और कभी भूल जाते हैं। कुछ लोग 2-3 दवाई को एक साथ में ले लेते हैं, इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि जो दवाई का रिएक्शन है वो ज्यादा बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ मनीषा, बात आती है कि हमारे शरीर में दवाई अपना काम एक निश्चित तरीके से करती है। डॉक्टर जब कोई दवाई लिखते हैं तो उसके पीछे मरीज की बीमारी, उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और दवाई की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है। कुछ दवाइयाँ दिन में एक बार दी जाती हैं, कुछ 2 बार और कुछ 3 या उससे अधिक बार। इसका उद्देश्य यह होता है कि शरीर में दवाई का प्रभाव उचित समय तक बना रहे। अगर हम दवाई बहुत देर से लेते हैं या बार बार समय बदलते रहते हैं तो दवाई का असर अपेक्षित तरीके से नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने दवाई सुबह और शाम लेने के लिए कहा, लेकिन वह कभी सुबह लेता है, कभी दोपहर में, तो कभी शाम की दवाई भूल जाता है। ऐसे में इलाज का पूरा लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताए गए समय, मात्रा और अवधि का पालन करना हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों हम देखते हैं कि दवाई समय पर लेने से सबसे बड़ा लाभ हमें यह मिलता है कि यह हमारी बीमारी में इलाज करने में मदद करता है। जब दवाई शरीर में डॉक्टर द्वारा निर्धारित तरीके से पहुंचती है श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि उसका काम है वो ठीक तरीके से हो पाता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई व्यक्ति बार बार दवाई लेना भूल जाता है तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि इलाज ही वो प्रभावित हो सकता है। बीमारी के अनुसार इसका प्रभाव श्रोता साथियों अलग अलग हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर द्वारा बताए गए समय का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यह स्थिति बहुत सामान्य है कि कई बार व्यक्ति काम में व्यस्त होता है और दवाई लेना भूल जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है कि छूटी हुई खुराक की भरपाई अपने मन से अतिरिक्त दवाई लेकर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई खुराक छूट गई है तो आगे क्या करना है यह दवाई के प्रकार और डॉक्टर के निर्देश पर निर्भर करता है। इसलिए दवाई के साथ दिए गए निर्देश पढ़े, डॉक्टर से पूछे कि हमें क्या करना है। विशेष रूप से ऐसी दवाइयों में सावधानी बहुत जरूरी है जिसकी मात्रा में थोड़ा बदलाव भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग दवाई शुरू करने के बाद कुछ दिनों में बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसके बाद वे सोचते हैं कि अब बीमारी ठीक हो गई है, दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन लक्षण कम होना हमेशा बीमारी पूरी तरीके से खत्म होने का मतलब नहीं होता। कुछ बीमारियों में डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक इलाज जारी रखना जरूरी होता है। इसलिए दवाई कितने दिन लेनी है यह निर्णय मरीज को अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने जितने दिन के लिए दवाई लिखी है उसी के अनुसार दवाई लें। अगर दवाई से कोई परेशानी हो रही है या कोई नया लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बदलना क्यों ठीक नहीं है। तो श्रोता साथियों, कई बार घर या पड़ोस में कोई व्यक्ति कह देता है कि मुझे भी यह बीमारी थी, मैंने ये दवाई ली थी, तुम भी ये ले लो। लेकिन हर व्यक्ति का शरीर और बीमारी एक जैसी नहीं होती। एक ही तरह के लक्षण अलग अलग बीमारियों में दिखाई दे सकते हैं, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की दवाई देखकर खुद से वही दवाई लेना उचित नहीं है। इसी तरह डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई की जगह अपनी इच्छा से दूसरी दवाई लेना, मात्रा बदलना या दवाई बंद कर देना भी ठीक नहीं है। दवाई वही ले जो आपके लिए स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर ने बताई है। साथियों, दवाई समय पर लेना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी नियमितता की जरूरत होती है। आप दवाई को अपनी रोज की दिनचर्या से जोड़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने अगर किसी दवाई को भोजन के बाद लेने के लिए कहा है तो उसे भोजन के बाद लेने की आदत बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि हर दवाई भोजन के साथ या भोजन के बाद नहीं ली जाती, इसलिए दवाई कब लेनी है या डॉक्टर या दवाई के निर्देश के अनुसार ही आप तय करें। याद रखें कि किस तरीके से हमें दवाई समय समय पर लेनी है। तो आजकल हम सभी के पास मोबाइल है, हम मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, घर में दवाई लेने का छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य समय याद दिला सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति की दवाई के लिए घर का कोई सदस्य निगरानी रख सकता है। अलग अलग दवाइयों को देख कर भ्रम न हो इसलिए उन्हें उनके नाम और समय के अनुसार व्यवस्थित रखा जा सकता है। डॉक्टर की पर्ची और दवाइयों की जानकारी संभाल कर रखनी चाहिए। श्रोता साथियों, हमारे परिवार में बुजुर्गों को कई बार एक से अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ऐसे में उन्हें कई अलग अलग दवाइयां लेनी पड़ सकती है। इस स्थिति में दवाई के नाम और समय को लेकर भ्रम हो सकता है। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे बुजुर्गों की दवाइयों को समझने में उनकी मदद करें। जरूरत हो तो एक कागज पर लिख दें सुबह कौन सी दवाई, दोपहर में कौन सी दवाई और रात को कौन सी दवाई। लेकिन किसी दवाई की मात्रा या समय में बदलाव परिवार का सदस्य अपनी तरफ से न करे, इसके लिए डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार घर में किसी व्यक्ति को बीमारी होती है साथियों, और दवाई देखकर हम दूसरे व्यक्ति की जो दवाइयां

0: लेते हैं वो भी हम लेने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह तरीका श्रोता साथियों हमारे लिए सही नहीं है। एक जैसी समस्या दिखने के बावजूद भी बीमारी का कारण अलग हो सकता है। व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, दूसरी दवाइयाँ और अन्य जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग हो सकती हैं। इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति की दवाई अपनी मर्जी से हमें नहीं लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आजकल लोग छोटी बड़ी समस्या होने पर तुरंत मेडिकल स्टोर जाकर दवाई खरीद लेते हैं। हर बीमारी में श्रोता साथियों खुद से दवाई लेना उचित नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: विशेष रूप से ऐसी दवाइयाँ जिन्हें डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है, उन्हें बिना सलाह के लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर श्रोता साथियों बीमारी बार बार हो रही है, लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या लंबे समय तक समस्या बनी हुई है, तो हमें स्वास्थ्य कर्मी की सलाह भी लेनी चाहिए।
2: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि गर्भवती महिला और बच्चों का विशेष ध्यान हमें कैसे रखना है। तो श्रोता साथियों, बच्चे, गर्भवती महिला और अन्य विशेष परिस्थिति वाले लोगों में दवाई की मात्रा और समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
0: जी हाँ,
2: बच्चों को बड़ों की दवाई अपनी तरफ से नहीं देनी चाहिए। बच्चों की दवाई उनकी उम्र, वजन और बीमारी के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के लेना उचित नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: केवल दवाई लेना ही इलाज का पूरा हिस्सा नहीं है। बीमारी के अनुसार डॉक्टर खान पान, आराम, पानी पीने, व्यायाम या अन्य सावधानियां भी बता सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह को ध्यान से समझना जरूरी है। अगर किसी दवाई को लेने के बाद एलर्जी, सांस में परेशानी, चेहरे गले में सूजन, बहुत अधिक चक्कर या कोई गंभीर असामान्य प्रक्रिया हो तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सीय सलाह लें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे, समय पर दवाई लेना श्रोता साथियों देखने में तो छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए श्रोता साथियों यह एक महत्वपूर्ण आदत है।
1: बिल्कुल,
0: जिस तरह हम रोज समय पर खाना खाते हैं, काम पर जाते हैं और जरूरी काम करते हैं, उसी तरह श्रोता साथियों डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई को भी हमें समय पर लेना चाहिए। एक छोटा सा हम अलार्म लगा सकते हैं, एक कागज पर लिख सकते हैं या उसका समय ही वो हम निर्धारित कर सकते हैं। इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि समय पर दवाई लेने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि दवाई बीमारी के इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसका सही लाभ तभी मिल सकता है जब उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय और सही मात्रा में लिया जाए।
2: बिल्कुल मनीषा, यही बात आती है कि आज की हमारी जो बातचीत है उससे एक बात ये साफ होती है कि दवाई सिर्फ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लेना भी जरूरी है।
0: जी हाँ।
2: दवाई का समय, मात्रा और कितने दिन लेना है, इन तीनों बातों का ध्यान रखना इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
2: दवाई को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा करना, किसी दूसरे व्यक्ति की दवाई लेना, तबीयत ठीक लगने पर इलाज बीच में छोड़ देना या छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए एक साथ ज्यादा दवाई लेना नुकसानदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: इसलिए अगर दवाई को लेकर कोई भ्रम है तो अनुमान लगाने के बजाय डॉक्टर, नर्स से हम पूछ सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, दवाई समय पर लेंगे, इलाज को सही तरीके से चलाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी होगी। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में जो भी हमारी बातचीत रही है श्रोता साथियों से वो उन्हें अवश्य पसंद आई होगी।
0: जी बिल्कुल।
2: विदा तो हम मनीषा जरूर कार्यक्रम के माध्यम से लेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थई सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाई एन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियाँ होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसे कि साथियों गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है, जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं तो कभी दुख होता है और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिरकर उठना सिखाती है। और दोस्तों जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती, जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों और एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहाँ से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों अगर बात करूं परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यही अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। प्रकृति भी श्रोता साथियों हमें इस तरीके से ही प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रकृति को हम एक महान शिक्षक मानते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई नया संदेश देता है। जैसे कि उगता हुआ सूर्य हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, वहीं बहती हुई नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। दोस्तों, प्रकृति के जो विशाल वृक्ष होते हैं वे हमें धैर्य और मजबूती का महत्व समझाते हैं, और जो छोटे छोटे बीज हैं वह हमें बताते हैं कि बड़े परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रकृति का अवलोकन करने वाला व्यक्ति जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके, त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है। साथियों, इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों, और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है, तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं, तो विदा जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपने करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।